बातें और ढेर सारे गाने आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर, नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर, एफएम रेनबो पर।

गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात दोस्तों। आज हूँ मैं आपके साथ आपके अपनी होस्ट एंड दोस्त ज्योति लेकर इस कार्यक्रम को, यानी कि आपका अपना फेवरेट शो नॉन स्टॉप गपशप सिर्फ और सिर्फ 107 FM रेनबो पर। तो दोस्तों 15 अगस्त में बस दो दिन बाकी है, चारों तरफ देशभक्ति का माहौल है, लेकिन सच सच बताना, जब आप बचपन में 15 अगस्त का नाम सुनते थे तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता था, देश प्रेम या फिर परेड के बाद मिलने वाली दो बूंदी के लड्डू या फिर वो गर्मा गर्म जलेबी। हाँ दोस्तों, आज हम गपशप में हम टाइम मशीन में बैठकर वापस चलेंगे अपने स्कूल के दिनों में। तो दिल थाम के बैठिए और बचपन की यादों की शैर शुरू करते हैं इस ऑल टाइम हिट गीत के साथ। लेकिन इस हिट गीत के साथ साथ ही साथ मैं बता दूं आप सभी को, यानी कि आज हम बातें करने वाले कि 15 अगस्त का नाम सुनते ही बचपन की बातें। जी हाँ, वो बचपन की बातें, वो बचपन के समय में आपको सबसे पहले क्या याद आता था। अगर आप भी अपनी मन की भावनाओं को या अपनी सोच को हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में, और हमारा नंबर है 2213-1341। तो चलिए दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत तो करेंगे लेकिन इस प्यारे से गीत के साथ, क्योंकि ये जो गीत अभी मैं आपको सुनाने वाली हूँ, कहीं ना कहीं इस गीत के साथ आपको बचपन की याद की सैर तो जरूर हो जाएगी।

0: हेलो हेलो,
1: गुड मॉर्निंग ज्योति।
0: गुड मॉर्निंग,
1: मैं मोनी रुद्र लश्कर बात कर रहा हूँ, दक्षिण सेंट्रल हावड़ा
0: जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: सबसे पहले एडवांस इंडिपेंडेंस डे आपको और सभी श्रोताओं को।
0: जी आपको भी और बहुत बहुत धन्यवाद।
1: और आज के साथ बचपन का तो कुछ फर्क है, कैसे पढ़ने गया उस मतलब हमारे स्कूल में टीचर का नेशनल फ्लैग तुलना और वंदे मातरम, जय हिंद और जन गण मन संगीत याद आया। और बाद में हमारे कुछ नृत्य मस्त रहता है हमारे टीचर, यही याद आता है लॉजेंसिया लड्डू का। लेकिन हमारे जो साधना प्रसंग का इतना देश प्रेम है, इतना हमारे लिए जान देता है, ये शायद हमारे टीचर बोला। लेकिन आज जो ऐसा सोचा है उस उम्र में यह सोच नहीं है, क्योंकि हमारे सोच इसी टाइम पर कमी है।
0: बिल्कुल,
1: इसीलिए हमारे दिल में है वंदे मातरम, जय हिंद, जन गण मन संगीत। लेकिन हमारे देश प्रेम का जो याद है, हमारे देश प्रेमियों का जो याद है, हमारे सैनिक का, हमारे जो स्वाधीनता संग्रामी का जो याद है, आज जितना अच्छा से याद है उतना अच्छा से याद नहीं है, इसे मैं सोचता हूँ।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद मुनीरुद्दीन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दोस्तों मुनीरुद्दीन जी ने तो बहुत ही अच्छी बातें बताई अपनी यादों के विषय में, अपने बचपन की यादों के विषय में। और अगर यदि आप इसी प्रकार से अपने बचपन की यादों को कुछ और भी बातें साझा करना चाहते तो बिल्कुल आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों अगले गीत की ओर रुख करते हैं।

0: तो दोस्तों स्टूडियो में समय हो चला है 10:23 और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नॉन स्टॉप गपशप अपनी दोस्त ज्योति के साथ सिर्फ और सिर्फ 107 FM रेनबो पर। तो चलिए दोस्तों हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, तो ये सुन दे कि वो क्या कहना चाहते हैं। हेलो
1: हेलो
2: ज्योति जी, गुड मॉर्निंग।
0: गुड मॉर्निंग
2: जी, मैं पारस पंडित चुचुआ हुगली से बोल रहा हूँ
0: जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है पारस जी हमारे इस कार्यक्रम में।
2: आपको प्रणाम नमस्कार धन्यवाद।
0: हाँ जी बताइए, तो आपको कौन से अपनी बचपन की बातें याद आ रही है 15 अगस्त के दिन की बातें सुनकर?
2: बचपन में मैं जब विद्यालय में पढ़ता था तो उस समय क्या होता था, हमारे विद्यालय में 2-3 दिन पहले राष्ट्रीय गीत का रिहर्सल करवाया जाता।
0: जी बिल्कुल,
2: तो वही गीत को हम लोग 15 अगस्त के दिन गाते थे। और सबसे पहले क्या करते थे, मैंने एक क्रेज रहता था सुबह सुबह उठकर इधर उधर से फूल इकट्ठा करना, धूप वगैरह इकट्ठा करना, लेकर हम लोग मैंने खुशी खुशी गाते थे। और मान लीजिए अगर कि बुधवार को 15 अगस्त है तो मंगलवार को हम लोग क्या करते थे, शाम को ड्रेस वगैरह तरह से धो कर रख देते थे।
0: अच्छा।
2: और एकदम साफ सुथरा ड्रेस पहनकर हम लोग विद्यालय में 3-4 छोटे छोटे बच्चे मैंने पार्टी में आते थे यहाँ से।
0: बिल्कुल।
2: और विद्यालय जाकर वहाँ पर थोड़ा साफ सफाई करते थे, मैंने झंडा जहाँ पर फहराया जाए पास वगैरह में तिरंगा झंडा को लपेट कर मतलब सर के साथ मिलकर उसको मतलब प्रस्तुति लेते थे। और उसके बाद जब प्रधानाध्यापक जी झंडा फहराते थे तो जनपन का गान करते थे, और उसके बाद हम लोग जो राष्ट्रीय गीत रिहर्सल करते थे 2 या 3 दोस्त मिलकर राष्ट्रीय गीत करते, और उसके बाद सर हम लोग को मिठाई या मान लीजिए बिस्कुट लॉजेंस देते थे, बहुत खुश होते थे और खुशी खुशी घर लौटते थे। और उसके बाद थोड़ा जब बड़ा हुए तो 15 दिन मोहल्ले में फुटबॉल का प्रतियोगिता होता था।
0: अच्छा।
2: और तो वहाँ से आकर फिर 10 बजे से फुटबॉल प्रतियोगिता में लग जाते थे।
0: यानी कि हाँ बोलिए बोलिए।
2: क्लब में भी झंडा फहराया जाता था
0: जी,
2: तो वहाँ भी साथ रहते।
0: यानी कि हमेशा से आप 15 अगस्त के दिन मौज मस्ती ही करते हुए आए हैं।
2: अभी भी वर्तमान में भी उस क्लब में हम

0: करते हैं और वहाँ पर जनता पार आते हैं बच्चों को लॉजेंस और किट वगैरह वितरण करते हैं।
1: जी
0: जी, यही मेरा शेड्यूल है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।
1: जी हमें भी बहुत अच्छा लगा।
0: जी जी, धन्यवाद दीदी।
1: धन्यवाद पारस जी, आपने अपने बचपन की यादों को, इतनी अच्छी यादों को हमारे साथ साझा किया, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: और स्वाधीनता के सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।
1: जी आपको भी स्वाधीनता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद
0: धन्यवाद।
1: तो चलिए दोस्तों, बातों और गीतों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अगले गीत की ओर रुख करते हैं। अब जब देशभक्ति की बात हो रही हो, स्वाधीनता दिवस के विषय में बातें हो रही हो, तो क्यों ना इसी विषय पर, यानी कि अपने देश अपने मुल्क के विषय पर एक गीत सुन लिया जाए।
2: और क्या, आपको जब भी प्यार जताना होता था हिंदुस्तान का झंडा भेज देते थे।
3: मां जानती हो बाबूजी ने सबसे ज्यादा प्यार किससे किया है?

0: ताज़ा करते हुए अपने अगले कॉलर की ओर रुख करते हैं। हेलो,
1: नमस्कार दीदी।
0: नमस्कार,
1: मैं शौभिक शौकर बोल रहा हूँ कस्बा से।
0: जी आपका बहुत बहुत स्वागत है शौभिक जी हमारे इस कार्यक्रम में।
1: थैंक यू थैंक यू। पहले तो आपको बहुत सारा थैंक यू मैं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि आज जो टॉपिक दिया है पहले तो 15 अगस्त के लिए हम लोग को ना बचपन में आप नॉस्टैल्जिक कर दिया।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद शौभिक जी।
1: वेलकम दीदी। मैं बोलना चाहता हूँ 15 अगस्त जो पहले जो एक सप्ताह 1 वीक पहले हम लोग को एक पैरेड के लिए हम लोग को प्रिपरेशन होता था, एक मोहरा होता था।
0: बिल्कुल,
1: लोग जो सभी क्लास के 5, 6, 10, 12 का वो स्टूडेंट जो है उसको लेकर पैरेड कुछ को आज होता था। हम लोग को जो एनसीसी में था इसलिए हम लोग ऑटोमेटिक भी चॉइस हो जाता थे, इसलिए हम लोग का जो पैरेड बोलिए कुछ को आज बोलिए हम करता था, प्रैक्टिस करता था। वो टिफिन टाइम के बाद हम लोग का प्रैक्टिस होता था 1 घंटे के लिए।
0: जी
1: अच्छा लगता था उस टाइम। पूरा दिन हम लोग का जो जो प्रधान शिक्षक हेड मास्टर जो थे उस बोलते थे 15 अगस्त के बारे में। उसके बाद हम लोग का जो सर जो है कोई ना कुछ कुछ ना बोल फ्रीडम फाइटर के लिए कुछ बोलते थे, वो नेताजी के बारे में, गांधी जी के बारे में, खुदीराम बारे में। बहुत अच्छा लगता था उस टाइम में, हम लोग चुपचाप सुनते थे उस टाइम में, और कोई ना कोई कोई परफॉर्मेंस करता था
0: जी।
1: किंतु दीदी मेन जो आकर्षण जो होता था वो लड्डू के बारे में, हम लोग सोचता था कब वो लड्डू आएगा, हम लोग हाथ में लेंगे लगता था, क्योंकि हमको लड्डू देता था, कभी कभी जिलेबी आता था, बहुत अच्छा लगता था उसके। माने हम लोग देखते थे कब वो मिठाई आएंगे हम लोग आएंगे, किंतु हम लोग जब वो मिठाई खाते थे तो बहुत अच्छा लगता था। जब पुनः कुछ जो आता है ना, माने हम लोग देखते थे एक दिन पहले जो 14 अगस्त हम लोग का स्कूल बहुत अच्छा सा सजता था, क्योंकि लोग को नेशनल फ्लैग बोलिए स्कूल में हम लोग का जो पैर सर जो हो वो सजाता था। अच्छा लगता था, एक मैं मन में बहुत एक गर्व बोध होता था जो हम लोग इसी देश में जन्मग्रहण किया है। इस फ्रीडम फाइटर बोलिए जो जो फ्रीडम फाइटर है,
0: बिल्कुल
1: जो इतनी लहरा था वो जब भी हम लोग सुनता था उसके बारे में हम लोग एकदम आंसू भर जाते थे, जे हम लोग इसीलिए हम लड़ रहे थे। एवं हम लोग को सर जो बोलते थे देश के लिए हम लोग कुछ ना कुछ करें, कुछ ना कुछ हम लोग को जो भी है थोड़ा सा गाछ लगाइए, रक्तदान शिविर में ब्लड डोनेशन में हम लोग को शिविर कभी ना कभी
0: बिल्कुल
1: बड़ा होकर हम लोग। मैं अभी भी बोलूंगा कभी ना कभी ये बोलिए गाछ लगाते थे और ब्लड डोनेशन में मैं गया हूँ, बहुत अच्छा लगता था जब भी कुछ या देखा तो एकदम मन भरा ये मैं बोलूंगा
0: जी। बहुत बहुत धन्यवाद शौभिक जी, आपने बहुत ही अच्छी अच्छी बातें अपने बचपन की यादों के बारे में हमारे साथ साझा किया।
1: थैंक यू दीदी, थैंक यू,
0: थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए। तो चलिए दोस्तों, बातों और गीतों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अगले गीत की ओर रुख करते हैं। और हाँ, आप यूं ही सुनते रहिए, साथ बने रहिए अपनी इस दोस्त ज्योति के साथ कार्यक्रम नॉनस्टॉप गपशप में। और बातों और गीतों का सिलसिला यूं ही चलने वाला है ठीक सुबह के 11 बजे तक, यानी कि आप भी अपनी कोई बचपन की बातें, यानी कि स्वाधीनता दिवस से जुड़ी हुई बचपन की बातें, यादें ताज़ा करना चाहते तो आप सभी का स्वागत है। फिलहाल सुनते हैं ये अगले गीत।

बातें और ढेर सारे गाने। आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो।

0: रोज अपने बचपन के छोटे छोटे तमाशा को याद करते हुए अगले कॉलर की ओर रुख करते हैं। हेलो।
1: हाँ हेलो,
0: नमस्कार।
1: हाँ नमस्कार दीदी, मैं पायल बोल रही हूँ, बेलकोरिया से।
0: जी आपका बहुत बहुत स्वागत है पायल जी हमारे इस कार्यक्रम में।
1: थैंक यू। हाँ दीदी, हमें सुनती तो ऑफिस में रही तो भावलम कथा बोली, कैमन आसो बोलो।
0: मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आप बताइए कि आप क्या बातें करना चाहती हैं। आज का विषय है कि 15 अगस्त का वो दिन स्कूल में जैसे बिताया करते थे, यानी कि उस वक्त जब स्कूल में लड्डू या मिठाई या जलेबी या चॉकलेट कुछ भी जो मिला करते थे तो किस तरह हम खुश हो जाया करते थे, तो हमारे लिए वो 15 अगस्त का दिन किस प्रकार से होता था।
1: ओके दीदी, एक तो खानी बांग्लाय बोला जावे, आमी
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: हेलो।
0: मैं सुन रही हूँ, बोलिए।
1: हाँ दीदी, मैंने एक्चुअली तुम ही जो दी हमें एक तो बांग्लाय बोला था, आमी हिंदी टा ओतोटा

तो दोस्तों, हम उस उम्र में हमें आज़ादी का मतलब शायद पता नहीं था, लेकिन हमारे लिए आज़ादी का मतलब था उस वक्त सुबह जल्दी उठना, दोस्तों के साथ देशभक्ति के गाने गाना और हाथ में लड्डू की पुड़िया लेकर शान से घर लौटना। आज भले ही वो दिन पीछे छूट गए हैं, लेकिन वो यादें आज भी दिल में वैसी ही कड़क जलेबी की तरह मीठी है।

बड़े हो गए हैं। अब 15 अगस्त का मतलब कई लोगों के लिए सिर्फ वीकेंड या लेट तक सोना बन गया है। लेकिन कभी कभी दिल चाहता है कि वही सफेद कपड़े पहनकर सीने पर कागज का तिरंगा लगाकर फिर से स्कूल के ग्राउंड में खड़े हो जाए, अपनी उस मासूमियत और बचपन की आजादी को सलाम करते हैं करते हुए। तो दोस्तों, घड़ी की सुइयां बता रही है कि नॉन स्टॉप गपशप, जी हाँ, अब खत्म होने का समय आ गया है, क्योंकि स्टूडियो में समय हो चला है 10:54:55, यानी कि यह सिलसिला अपनी समाप्ति की ओर है। लेकिन दोस्तों, चाहे मिठाइयां मिले ना मिले, लेकिन देश प्रेम का वो जज्बा जो बचपन में था, उसे हमेशा अपने दिल में जिंदा रखिए। और इस 15 अगस्त अपने बचपन के दोस्तों को कॉल जरूर कीजिए और अपनी पुरानी यादें ताजा कीजिए। तो दोस्तों, मैं आज आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त आप सभी से लेती हूँ इजाजत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हाँ, सुनते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल 107 FM रेनबो। इसी आशा के साथ आप सभी से लेती हूँ मैं इजाजत और जाते जाते आप सभी के लिए

अमित नारायण की आवाज में एक मधुर तराना आप सभी के लिए छोड़े जाती हूँ, लेकिन मैं आप सभी से मिलने आऊंगी ठीक 11:10 पर, यहाँ नहीं, जी हाँ 100.1 FM गोल्ड पर। कार्यक्रम लो आ गई उनकी याद लेकर। बस तब तक के लिए अपनी दोस्त ज्योति को दीजिए इजाजत।

0: नमस्कार, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सभी। आशा है कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं पापिया हाजिर हो गई हूँ ठीक 3:03 पर लेकर हम सभी का प्यारा सा कार्यक्रम।
1: गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं 3 का तड़का 107 FM रेनबो पर। 3 का तड़का 107 FM रेनबो पर।
0: जी हाँ, 3 का तड़का जहाँ होती है कुछ चटपटी बॉलीवुड वाली बातें और साथ ही साथ होते हैं कुछ प्यारे प्यारे खूबसूरत और चटपटे से गीत भी। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं सोहम की आवाज़ से। मैं

दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर टॉम हॉलैंड की फिल्म का जलवा बरकरार है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ स्पाइडरमैन अनदर डे की। दूसरे हफ्ते में सिर्फ 6 दिनों में फिल्म 120 करोड़ रुपए और 25 लाख रुपए साथ में कमा लिया और उम्मीद है कि रविवार तक 127-128 करोड़ का आंकड़ा जरूर छू लेगी। यानी 2 हफ्तों में कुल कलेक्शन करीब 520 करोड़। भारत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हॉलीवुड फिल्म बनने के बाद अब नजर है 600 करोड़ पर। लेकिन आगे की राह आसान होगी कि नहीं, क्योंकि मुकाबले में आ रही है बंटवारा 1947 और आवारापन 2। तो देखते हैं टॉम हॉलैंड की स्पाइडरमैन की फिल्म 600 करोड़ का तड़का लगा पाती है या नहीं। फिलहाल हम जरूर तड़का लगाएंगे। अगला अरमान मलिक के पास में बाहर है बारिश वाला मौसम, तो साथ में कुछ रोमांटिक ट्रैक्स अगर हो जाए तो इनका तड़का में तो फिर बात ही बन जाए। चलिए सुनते हैं अरमान मलिक के पास में ये गाना।

0: 107 FM रेनबो प्रेजेंट्स परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति
1: सीढ़ी की घड़ी समय बता रही है 5:16 और 7 सेकंड एग्जैक्टली और मैं आ गई हूँ वापस परियोजना प्रस्तुति के एक नए अंक के साथ। आज हम बात करेंगे दोस्तों रिसर्च ग्रांट फॉर इन सर्विस फैकल्टी मेंबर्स पर। अगर आप उच्च शिक्षा में अध्यापन के साथ साथ अपने विषय में शोध करना चाहते हैं तो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी UGC की रिसर्च ग्रांट फॉर इन सर्विस फैकल्टी मेंबर्स योजना आपके लिए महत्वपूर्ण अवसर हो सकती है। UGC के अनुसार इस योजना का उद्देश्य नियमित रूप से नियुक्त फैकल्टी सदस्यों को अपने विशेषज्ञता के क्षेत्र में शोध करने के लिए प्रोत्साहित और आर्थिक रूप से समर्थ बनाना है। इस योजना के तहत चयनित फैकल्टी सदस्य को 2 वर्षों के लिए 10 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाती है। इस राशि का इस्तेमाल शोध से जुड़े छोटे उपकरण, आवश्यक सामग्री, फील्ड वर्क, यात्रा या अन्य स्वीकृत खर्चों के लिए किया जा सकता है। हालांकि इस राशि से अंतर्राष्ट्रीय यात्रा, फर्नीचर या प्रोजेक्ट असिस्टेंस अथवा रिसर्च फेलो या नियुक्ति नहीं की जा सकती। योजना के लिए सामान्य तौर पर आवेदक की उम्र 50 वर्ष तक होनी चाहिए और उसके पास विश्वविद्यालय में कम से कम 10 वर्ष की सेवा शेष होनी चाहिए। साथ ही पात्रता में शोध अनुभव से जुड़ी अतिरिक्त शर्तें भी निर्धारित हैं, जिनमें 5 पूर्णकालिक PhD शोधकर्ताओं को शोध कार्य का सफल पर्यवेक्षण और कम से कम 2 प्रायोजित शोध परियोजनाओं का सफलतापूर्वक पूरा किया जाना शामिल है। यानी ये योजना सिर्फ आर्थिक सहायता नहीं बल्कि देश में उच्च शिक्षा और शोध की गुणवत्ता को आगे बढ़ाने का एक प्रयास भी है, क्योंकि जब शिक्षक नए सवालों पर शोध करते हैं तो उसका लाभ केवल शोध पत्रों तक सीमित नहीं रहता, उसका असर विद्यार्थियों की शिक्षा और ज्ञान के पूरे क्षेत्र में भी पड़ता है। तो ये थी आज की परियोजना प्रस्तुति।
0: परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति।
2: अगस्त 1947 भारत के इतिहास का वो रक्त रंजित दिन जब देश का विभाजन हुआ और लाखों लोगों ने इस बंटवारे की त्रासदी से विभाजन के कारण लोगों को अपना घर, परिवार, जमीन और संपत्ति भी छोड़नी पड़ी। असहनीय पीड़ा से जूझते इन मजबूर और विस्थापित

लोगों को निर्मम हिंसा का सामना करना पड़ा। वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विभाजन की असहनीय पीड़ा और दुख से गुजरे लोगों को याद करने और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की घोषणा की। आइए 14 अगस्त 2026 को बंटवारे और उस समय हुई क्रूर हिंसा के शिकार हुए लोगों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। अपने आसपास होने वाले साइलेंट मार्च में भागीदारी करते हुए उनकी याद में एक मिनट का मौन धारण करें।

गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं तीन का तड़का, तीन का तड़का, तीन का तड़का, 107 FM रेनबो पर, तीन का तड़का, तीन का तड़का, तीन का तड़का, 107 FM रेनबो पर।

तो दीन का दरगाह में दोस्तों आज का आखिरी दरगाह, स्वतंत्रता दिवस आने वाला है और स्वतंत्रता दिवस पर बॉक्स ऑफिस पर होने वाली है बड़ी भिड़ंत। एक तरफ सनी देओल की बंटवारा 1947 तो दूसरी तरफ इमरान हाशमी की आवारापन 2। लेकिन रिलीज से एक दिन पहले ही आंकड़े कहानी पलटते नजर आ रहे हैं। ट्रेंड प्रेडिक्शन के मुताबिक आवारापन 2 पहले दिन करीब 19 से 21 करोड़ रुपए कमा सकती है, जबकि बंटवारा 1947 का अनुमान सिर्फ 5 से 7 करोड़ के बीच है। यानी अगर इमरान हाशमी की फिल्म 21 करोड़ छूती है तो सनी देओल की फिल्म के मुकाबले करीब 300% ज्यादा कमाई। ये सवाल जो है अब जो आ गया है वो सवाल 15 अगस्त का बॉक्स ऑफिस किंग कौन बनेगा वो तो समय के साथ ही पता चलेगा। फिलहाल दीन का तड़का जो है, हमारे गानों का जो सिलसिला है, ये यहीं ख़त्म होता है। इसके बाद आप सीधे सुनेंगे एनसीईआरटी का स्पेशल प्रोग्राम 3:30 बजे से जो आप सुनते हैं। और फिलहाल जाते जाते आवारापन 2 की बात जब बात हो रही है तो आवारापन का ये गाना क्यों ना सुन लिया जाए मुस्तफ़ा साहिद की आवाज़ में। मिलते हैं ठीक 5:15 पर FM गोल पर, उसके बाद फिर 7:02 पर छाया लोक नजारा।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोता मित्रों को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार और जोहार। स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में। आइए सुनते हैं आज का सुविचार जो हमें भेजा है कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने। लिखते हैं,
2: जीवन एक दर्पण की तरह है, आप मुस्कुराएंगे तो जीवन भी मुस्कुराएगा, इसलिए हर परिस्थिति में आशा, प्रेम और सकारात्मकता बनाए रखें।
3: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर संदेश के लिए। आपसे निवेदन है इसी प्रकार से संदेश भेजते रहें, विचार भेजते रहें, ताकि हमें भी प्रेरणा मिलती रहे।
2: जी
3: आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो श्रोताओं, पहला संदेश हमें मिला है माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल जी का।
2: छत्तीसगढ़ नगर पंचायत पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा।
3: और पहंदा पलारी से नीतीश कुमार, ईशांत देवांगन, सावित्री बाई देवांगन और तनुजा बाई देवांगन।
2: करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर।
3: और रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू और शुभम सेजल साहू।
2: धन्यवाद आप सबका संदेश भेजने के लिए। स्वतंत्रता दिवस के इस पूर्व सप्ताह में सभी श्रोताओं का ये भी जानिए श्रृंखला की अगली कड़ी में स्वागत है। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े कुछ कम चर्चित चेहरों के साथ साथ चर्चित चेहरों की भी।
3: इस क्रम में आज हम बात करेंगे विनायक दामोदर सावरकर जी के जीवन और उनके योगदान पर। उनका जन्म 28 मई 1883 को महाराष्ट्र के नासिक जिले के भागूर गाँव में हुआ था। वे एक स्वतंत्रता सेनानी, क्रांतिकारी लेखक, कवि, समाज सुधारक और राजनीतिक विचारक थे। उन्हें सामान्यतः वीर सावरकर के नाम से जाना जाता है।
2: अब जानते हैं उनके बचपन के बारे में। बाल्यकाल से ही उनमें देशभक्ति की भावना प्रबल थी। उन्होंने पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की और बाद में वे कानून की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड चले गए। उन दिनों भारत अंग्रेजों का गुलाम था। बहुत से युवा देश आजादी के लिए अपने अपने तरीके से प्रयास कर रहे थे।
3: सावरकर जी ने भी लंदन में भारतीय युवाओं को संगठित किया और स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा देने का प्रयास किया।
2: सावरकर जी ने इंग्लैंड में रहते हुए अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन को मजबूत किया और युवाओं का आह्वान किया कि देश की आजादी के लिए वे एकजुट हों और संघर्ष करें। इस दौरान उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसे द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के नाम से जाना जाता है। इस पुस्तक से बहुत से लोगों को प्रेरणा मिली।
3: श्रोताओं, उनकी क्रांतिकारी गतिविधियों और बढ़ते हुए प्रभाव को देखते हुए सन 1910 में ब्रिटिश सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और अंडमान की कुख्यात सेल्यूलर जेल भेजा गया, जिसे काला पानी कहा जाता है।

0: जाता था।
1: जेल में उन्हें अत्यंत कठोर यातनाएं सहनी पड़ी। उनसे तेल का कूल्हू चलवाया जाता था, नारियल कुटवाए जाते थे और कठिन श्रम कराया जाता था। इन कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने लेखन और अध्ययन का कार्य नहीं छोड़ा।
2: सावरकर जी एक उत्कृष्ट लेखक और कवि थे। उन्होंने इतिहास, समाज, राजनीति और राष्ट्रवाद पर अनेक पुस्तकें लिखी। उनकी रचनाओं में राष्ट्र प्रेम, आत्मबल और संगठन पर विशेष बल मिलता है। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को सशक्त बनाया, लेकिन सामाजिक सुधारों पर भी उनका बहुत अधिक जोर रहा।
1: सावरकर ने जाति भेद और छुआछूत का विरोध किया। उनका मानना था कि समाज तभी मजबूत होगा जब सभी लोग समान सम्मान के साथ रहें। उन्होंने सामाजिक एकता और समरसता पर बहुत बल दिया।
2: श्रोता, उनके विचारों का भारतीय राजनीति पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। उनके समर्थक उन्हें प्रखर राष्ट्रवादी और दूरदर्शी विचारक मानते थे। 26 फरवरी 1966 को मुंबई में उनका निधन हुआ। जीवन के अंतिम दिनों में उन्होंने इसे आत्मार्पण कहा और स्वेच्छा से भोजन और दवाओं का त्याग कर दिया।
1: वीर सावरकर भारतीय इतिहास के उन व्यक्तित्वों में से हैं जिनके जीवन में क्रांतिकारी संघर्ष, साहित्य, सामाजिक सुधार और राजनीतिक चिंतन का अनोखा संगम दिखाई देता है।
2: तो श्रोताओ, ये थी जानकारी भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर की। और आइए अब सुनते हैं आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। तो हमारा प्रश्न है, वीर सावरकर जी द्वारा रचित पुस्तक का नाम बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: वीर सावरकर जी द्वारा रचित पुस्तक का नाम बताइए।
2: हमारे IBRS नंबर यानी 8800440559 पर आप अपना उत्तर भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, एक्स, लिंक्डइन और फेसबुक पर भी आप CIT NCERT को फॉलो करके शैक्षिक गतिविधियों की ताज़ा जानकारी ले सकते हैं।
2: श्रोताओ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाइए, टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। वेबसाइट में दिए गए दिशा निर्देशों का पालन कीजिए और अपनी मनचाही पुस्तक डाउनलोड कीजिए।
1: और यदि इन्हीं पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल पर जाइए, निर्देशों का पालन कीजिए, अपना विकल्प दीजिए और पाठ्य पुस्तकों को सुनिए। आप इन्हें डाउनलोड भी कर सकते हैं।
2: जी हाँ श्रोताओ, तो आइए अब सुनते हैं आज के खास शैक्षिक कार्यक्रम। श्रोताओ, जैसा कि आप जानते हैं, हम स्वतंत्रता दिवस के पूर्व सप्ताह में चल रहे हैं, तो इसलिए हमारी प्रस्तुति विशेष रूप से आजादी पर ही केंद्रित रहेगी।
1: जी,
2: तो इस क्रम में आइए सुनते हैं कार्यक्रम भगत सिंह।
1: ये कार्यक्रम अमर शहीद भगत सिंह के जीवन, उनके शौर्य, चिंतन और बलिदान के बारे में विस्तार से जानकारी देता है और युवाओं तथा बच्चों को प्रेरित करता है कि वे पूर्ण समर्पण से देश की सेवा करें और आजादी के मूल्य को पहचाने।
3: अपने देश के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कुछ नारे बहुत प्रचलित हुए, जैसे बंकिम चंद्र चटर्जी का वंदे मातरम का नारा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जय हिंद का नारा, लोकमान्य तिलक की ललकार कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, और महात्मा गांधी की पुकार अंग्रेजों भारत छोड़ो। ये सब उन दिनों बच्चे बच्चे की जुबान पर थे। इन सब महान लोगों के दिए हुए इन महामंत्रों के बीच एक 20-22 साल के नौजवान की निडर आवाज भी गूंजी थी।
4: बहरे कानों को सुनाने के लिए जोरदार धमाके की जरूरत होती है।
3: नई दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में गूंजने वाली ये निर्भीक आवाज थी सरदार भगत सिंह की।
5: भगत सिंह का जन्म 26 सितंबर सन 1907 को लायलपुर के बंगा गांव में हुआ था और चाचा अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह प्रसिद्ध देशभक्त थे। चाचाओं के कंधे पर चढ़कर घूमने वाले भगत सिंह ने बचपन से ही देशभक्ति और निर्भीकता का पाठ पढ़ा था। वे अभी 12 वर्ष के ही थे कि अमृतसर के जलियांवाला बाग में जनरल डायर के हुक्म से सैकड़ों निहत्थे निर्दोष लोगों को गोलियों से भून डाला गया। भगत सिंह के बालक मन पर इस घटना का बड़ा गहरा असर पड़ा।
6: कौन कौन है?
7: मैं हूं अमरो, भगत सिंह। पर
0: तू इतनी रात को

0: यहाँ आंगन में बैठी क्या कर रही है?
1: तुम्हारा ही रास्ता देख रही थी भाई, कहाँ चले गए थे तुम?
0: तीर्थ करने चला गया था अमृतसर।
1: अमृतसर? अच्छा अच्छा, दरबार साहब में मत्था टेकने गए थे क्या?
0: नहीं बहन, मैं तो जलियांवाला बाग की मिट्टी को मत्था टेकने गया था, जहां त्योहार के दिन सैकड़ों बेकसूर निहत्थे बंदों का खून गिरा था। ये देख,
1: ये इस शीशी में क्या है?
0: इस शीशी में खून से रंगी वही मिट्टी है।
1: हाय रब्बा, इस खून वाली मिट्टी का क्या करोगे वीर जी?
0: मैं इसकी पूजा किया करूंगा अमरो। ये मिट्टी मुझे देश पर कुर्बान होने वाले शहीदों की याद दिलाएगी। तू देखना बहन, इसी मिट्टी से शहीदों की नई फसल पैदा होगी। अंग्रेज सिर काटते काटते थक जाएंगे, मगर हम सिर कटाते नहीं थकेंगे। और अब उन्हें हमारा देश छोड़कर जाना ही पड़ेगा।
1: धीरे बोलो, किसी ने सुन लिया तो थाने में रपट हो जाएगी।
0: अच्छा ही है, अंग्रेजों की पुलिस जान जाएगी कि एक और दीवाना सिर कटाने को तैयार हो गया है। हाँ, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने पर बता देंगे तुझे ओ आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में।
2: स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद भगत सिंह ने लाहौर के नेशनल कॉलेज में दाखिला लिया। वहां उनकी जान पहचान अपने जैसे कई और आजादी के दीवानों से हुई। इन लोगों ने मिलकर भारत नौजवान सभा का गठन किया। जल्दी ही इनका संपर्क उत्तर प्रदेश, बंगाल, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत के क्रांतिकारी संगठनों के साथ हो गया। उत्तरी भारत के प्रमुख क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद भी इनके पास आते जाते रहते थे। ये सब लोग दिन रात देश को स्वतंत्र कराने के लिए प्रयत्नशील रहते।
3: फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया। भारत की दशा पर विचार विमर्श करने के लिए बनाए गए इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। भारतीयों ने इस बात का जमकर विरोध किया। हर जगह इस कमीशन का स्वागत काले झंडों और साइमन गो बैक के नारों से किया गया। अक्टूबर में साइमन कमीशन लाहौर आया। इसके विरोध में एक बहुत बड़ा जुलूस निकाला गया। पुलिस ने जुलूस पर अंधाधुंध लाठियां बरसाईं। बुजुर्ग नेता लाला लाजपत राय पूरी तरह जख्मी हुए और कुछ समय बाद इन्हीं चोटों के कारण उनका देहांत हो गया।
0: भगवती भैया, लाला जी की मौत का बदला लेना ही होगा।
4: वो तो ठीक है भगत सिंह, मगर हम बदला किससे लेंगे? लाला जी पर लाठियां बरसाने वाले सिपाही भी तो हमारे हिंदुस्तानी भाई थे।
0: हाँ, मगर उन्हें लाठी चलाने का आदेश देने वाला तो अंग्रेज था, सुप्रिंटेंडेंट स्कॉट। मुझे लाला जी के बदन पर पड़ने वाली एक एक चोट की कसम है, मैं स्कॉट को जिंदा नहीं छोड़ूंगा।
2: चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह ने स्कॉट को मारने की योजना बनाई। स्कॉट को पहचानने वाला साथी जयगोपाल अपनी साइकिल ठीक करने के बहाने थाने के ठीक सामने रुका हुआ था। एक अंग्रेज पुलिस अफसर को थाने से निकलते देख उसने इशारा किया। उसका इशारा पाते ही आजाद और भगत सिंह साइकिल पर आगे बढ़े। राजगुरु पैदल थे। इन लोगों ने पलक झपकते ही अंग्रेज अफसर का काम तमाम कर दिया। साथ में एक भारतीय सिपाही चानन सिंह भी मारा गया। ये लोग साइकिलों पर सवार होकर भाग निकले। इन्हें बाद में पता चला कि ये मरने वाला अंग्रेज अफसर स्कॉट नहीं बल्कि उसका सहयोगी सॉन्डर्स था। लगभग उसी समय भगत सिंह ने तय किया कि वे अपनी बात बाहरी दुनिया तक पहुंचाने के लिए एक धमाका करेंगे। दिल्ली के

0: सेंट्रल असेंबली हॉल में बम फेंकने की योजना बनाई गई। इस बम से जोरदार धमाका हुआ। हॉल में धुआं भर गया, लेकिन इससे कोई भी घायल नहीं हुआ। इसके बाद वहां क्रांतिकारी विचारधारा को स्पष्ट करने वाले गुलाबी रंग के पर्चे फेंके गए और भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने स्वेच्छा से गिरफ्तारी दी। हालांकि आजाद नहीं चाहते थे कि भगत सिंह गिरफ्तार हों। वे बम वाली घटना के दिन भगत सिंह और दत्त को वहां से हटाकर सुरक्षित स्थान पर ले जाने का पूरा प्रबंध कर चुके थे, लेकिन भगत सिंह ने स्वयं ही गिरफ्तारी, जेल और फांसी का रास्ता चुना।
1: और ऐसा हुआ भी। 28 मार्च सन 1931 को क्रांतिकारी गतिविधियों के फलस्वरूप भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई। ये वो लोग हैं जो देश के लिए मरकर अमर हो गए।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम भगत सिंह।
3: आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम शो।

0: बच्चों, सन 1857 के भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम से तो आप परिचित ही होंगे, लेकिन उससे भी दो साल पहले यानी सन 1855 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक भीषण युद्ध हुआ था। ये युद्ध संथाल परगना और बीरभूम के आदिवासियों ने लड़ा था। अंग्रेजों के अत्याचारों से विवश होकर इन लोगों ने मारो या मरो का संकल्प लिया और अंग्रेजों से स्वतंत्र होने की ठान ली।
1: बहुत हो गया, अंग्रेजों के अत्याचार बहुत सह लिए।
2: हाँ बाबा, हम तो जैसे आदमी ही नहीं।
1: ये अंग्रेज हमें कायर और कमजोर समझते हैं, लेकिन अब हम...
3: हाँ बाबा बताओ, हमें क्या करना होगा?
1: आजादी। अब हमें स्वतंत्र होना है।
2: मगर बाबा, ये अंग्रेज लोग, इनके पास तो बहुत बड़ी फौज है, बड़े खतरनाक हथियार है इनके पास।
1: हमारे पास हथियार भले ही ना हो, मगर उन्हें कुचल डालने का हौसला तो है, अरे हिम्मत तो है। बस इसके लिए त्याग और बलिदान चाहिए। हाँ, आजादी के लिए कीमत तो चुकानी पड़ती है मेरे बच्चों।
3: हाँ बाबा, हम ये कीमत जरूर चुकाएंगे। हम ये अत्याचार नहीं करेंगे।
0: इस प्रकार युद्ध शुरू हुआ। संथाल आदिवासियों के पास हथियारों के नाम पर धनुष था और बाण थे, मगर इनका निशाना अचूक था। संथाल आदिवासी तो सदा से ही घने जंगलों में रहते थे, परंतु ब्रिटिश सेना का इन जंगलों में युद्ध करने का ये पहला अनुभव था, इसलिए अंग्रेजों को लड़ने में कठिनाई आ रही थी।
4: My God, इतने घने जंगलों में इन आदिवासियों से आमने सामने की लड़ाई लड़ना बहुत ही कठिन काम है।
5: Yes, sir.
4: हमें कोई और तरीका सोचना होगा।
5: सर, क्यों ना हम कुछ हाथियों को शराब पिलाकर इनकी बस्तियों में छोड़ दें?
4: Good, very good. बहुत अच्छा आइडिया है।
5: Thank you, sir.
4: हमें ऐसा ही कुछ करना होगा। नशे में पागल हाथी इन आदिवासियों को कुचल डालेंगे।
5: यस सर, हाथियों के सामने उनकी तीरंदाजी धरी रह जाएगी सर।
4: सिपाही।
5: यस सर।
4: हाथियों को शराब पिलाओ और फिर उन्हें इन आदिवासियों के घरों की तरफ दौड़ा दो।
5: यस सर।
6: Thank you.

0: अंग्रेजों की इस योजना ने आदिवासियों की कमर तोड़ दी, मगर नहीं टूटा तो उनका हौसला और भी मजबूत हो गया। भारत को आजाद कराने का उनका एक ही सपना उनकी आंखों में बस गया था। मुट्ठी भर मासूम आदिवासियों ने बस जैसे देश के लिए न्योछावर होने की ठान ही ली थी। आदिवासियों की टोह लगाते लगाते एक दिन अंग्रेजों की फौज एक गांव में जा पहुंची।
1: अरे जागो, अरे जागो, अरे जागो, अरे अरे दुश्मन आ गया, दुश्मन,
2: दुश्मन। हम तैयार हैं बाबा।
1: अरे दुश्मन हमें पकड़ने आया।
2: अरे दुश्मन हमें नहीं पकड़ सकेगा।
1: अरे चलो चलो अपने अपने घरों में और लेकर दुश्मन की छाती पर तीर चलाना शुरू करो।
2: चलो चलो
3: चलो
2: चलो चलो चलो।
0: गांव वालों ने आओ देखा ना ताओ सिपाहियों पर तीर बरसाने शुरू कर दिए। सिपाहियों ने गोलियों की भयानक बरसात कर दी। कई आदिवासी न्योछावर हो गए। मगर उस गांव में एक घर ऐसा था जहां से तीरों की बौछार रुकने का नाम नहीं ले रही थी।
4: सिपाहियों, इस घर को चारों तरफ से घेर लो और पूरे जोर से हमला करो।
5: यस सर।
0: जब बहुत देर तक गोलीबारी हो चुकी तो फौज के कप्तान ने उस घर के बाहर से आवाज लगाकर कहा,
4: सभी आदिवासी जो इस घर में छुपे हुए हैं वो अपने आप को हमारे हवाले कर दे। जान बचाने का ये आखिरी मौका है।
0: वीरों ने कब डरना सीखा, वीरों ने कब सीखा झुक जाना। वीरों का संकल्प यही था, देश के हित में मर मिट जाना। किसी कवि की इन पंक्तियों में जो भाव है वही भाव था आदिवासियों के संकल्प में। उन्होंने हथियार नहीं छोड़े, तीर चलते रहे, गोलियां चलती रहीं। अंत में धीरे धीरे तीर कम होने लगे, फिर कुछ देर बाद तीर चलने बंद हो गए। सिपाही घर के अंदर घुस गए। अंदर सब तरफ लाशें थीं। बस एक वृद्ध आदिवासी अंतिम सांसें ले रहा था। ये वही आदिवासी था जो अंत तक तीर चलाता रहा था। अंग्रेज कप्तान उस वृद्ध की ओर लपका और चीखा,
4: अपने आप को हमारे हवाले कर दो, हमारे हवाले कर दो।
1: हवाले कर दे।
4: yes.
0: वृद्ध ने अपना खंजर निकाला और कप्तान की गर्दन पर दे मारा। कप्तान के मरते ही वृद्ध पर गोलियों की बौछार हुई। वो वृद्ध शहीद हो गया। संथाल आदिवासियों का युद्ध समाप्त हो गया। इस लड़ाई में

0: 25,000 लोग शहीद हुए। आखिर जिस आदमी ने आखिरी तीर चलाया उसका नाम क्या था? इस बारे में इतिहास चुप है, लेकिन इतिहास इतना चुप भी नहीं कि वो ये भी ना बता सके कि वो अनाम आदिवासी शूरवीर था। शूरवीर
1: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम शूरवीर, और आइए अब सुनते हैं प्रेरणा और देशभक्ति की ऊर्जा से भरा हुआ ये गीत सारे जहां से अच्छा।
2: प्रसिद्ध शायर मोहम्मद इकबाल द्वारा रचित इस गीत ने भारत की आजादी के आंदोलन में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और लाखों करोड़ों लोगों को प्रेरित किया था। आज भी ये गीत ना ही प्रेरणादायी और ऊर्जावान है। इस गीत में भारत भूमि की प्रशंसा की गई है।

0: यह है नए भारत की पहचान। फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के हर घर तिरंगा हर दिन तिरंगा अभियान से जुड़ें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
1: आइए सुनते हैं फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट श्री नवीन जिंदल का विशेष संदेश।
0: वंदे मातरम। प्यारे देशवासियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम अमर शहीदों को नमन करते हैं और राष्ट्र निर्माण में जुटे हर भारतीय का अभिनंदन करते हैं। विक्रम 1 की लॉन्चिंग, $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य, राष्ट्रमंडल खेलों में 39 पदक और डिजिटल क्रांति, यही है नए भारत की पहचान। फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के हर घर तिरंगा हर दिन तिरंगा अभियान से जुड़ें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
2: गाने बाजू ओने रेडियो सुनछो 107 FM रेनबो सात सुरे सारा दिन।
3: শুনছো ক্যাফে কলকাতা, ক্যাফে কলকাতা 107 FM রেইনবোতে, ক্যাফে কলকাতা।

0: नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सभी। आशा है कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और मैं फाफिया हाजिर हो गई हूँ 107 FM रेनबो पर फटाफट लेकर।
1: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक, छायालोक।
0: जी हाँ, और है आज बृहस्पतिवार का दिन नहीं आने की
2: नजारा फिल्मों का।
0: तो दोस्तों, मैं आपकी दोस्त आरजे, आप सुन रहे हैं नजारा फिल्मों का। और आज की इस फिल्मी यात्रा की शुरुआत एक छोटे से सवाल से करते हैं कि आपको किसी फिल्म का ऐसा कौन सा दृश्य याद है जिसमें आपको लगा हो कि अगर उस दृश्य की, उस सीन की जगह ही बदल दी जाए तो शायद पूरी कहानी का असर ही बदल जाएगा। यानी कोई ऐसा शहर, कोई सड़क, कोई पुरानी हवेली, कोई पहाड़ी रास्ता, कोई रेलवे स्टेशन, कोई समुद्र का किनारा, या जिसे देख कर आप मन ही मन कहें वाह क्या जगह है ना। सोचिए और साथ ही साथ सुन लीजिए ये गाना।

जरा सोचिएगा, हो सकता है आपके दिमाग में कोई फिल्म आ ही जाए। शायद कोई ऐसी फिल्म जिसे आपने कई बार देखा हो और जिसकी कोई भी सीन आपको बहुत बहुत ही अच्छी तरह से तरीके से याद हो, और आपको लगता है कि अगर ये सीन इस जगह पे फिल्माया नहीं जाता तो फिर बड़ा अधूरा सा लगता है। शायद मुंबई की बारिश हो तो वो सिर्फ बारिश नहीं रहती, उसके साथ शहर की बेचैनी जुड़ जाती है। पहाड़े हो तो उनमें सिर्फ खूबसूरती नहीं होती, कभी इंतजार होता है, कभी तन्हाई हो, कभी प्यार और कभी बिछड़ने का दर्द। कोई पुरानी हवेली हो तो उसकी दीवारें भी जैसे कुछ कहती है। कोई सुनसान सड़क हो तो वो सिर्फ सड़क नहीं रहती, वो कहानी का मोड़ बन जाती है। और यही है आज का नजारा फिल्मों का सफर। जब लोकेशन सिर्फ लोकेशन नहीं रही बल्कि फिल्म की कहानी का एक किरदार बन गई। आज हम उन फिल्मों की तरफ भी चलेंगे जिनकी खूबसूरती सिर्फ उनके सितारों या गीतों में नहीं। कुछ फिल्में बहुत मशहूर हैं लेकिन उनके फिल्माए जाने की जगहों की कहानी कम सुनी गई है, और कुछ ऐसी भी जगहें हैं जिन्हें शायद आपने देखा हो मगर ये ध्यान न दिया हो कि जिस इस शहर या जगह पर आप पर्दे पर देख रहे हैं वो असल में फिल्म की कहानी को कितना बदल रही है। शुरुआत करते हैं चलिए कोलकाता से। कोलकाता को फिल्मों में दिखाने का अंदाज हमेशा थोड़ा लग रहा है। ये शहर अपनी पुरानी इमारतों, पीली टैक्सियों, ट्राम, बारिश की भीगी सड़कों और संकरी गलियों के साथ कैमरे के सामने आता तो लगता है और जैसे शहर खुद अपनी कुछ पुरानी डायरी खोल रहा हो। और इसी शहर की खासियत भी है, ये आपको अपनी तरफ खींचता है, धीरे धीरे अपने भीतर ले जाता है। यही वजह है कि जब गुलजार ने फिल्मों की दुनिया में कोलकाता आता है तो महज बैकग्राउंड नहीं लगता शहर, बल्कि शहर की अपनी आवाज सुनाई देती है। याद कीजिए इजाजत को, ये फिल्म रिश्तों के बीच की उन जगहों पर चलती है जहां शब्द कम पड़ जाते हैं, और गुलजार के सिनेमा में जगह भी अक्सर उतना ही बोलती है जितने के किरदार। रेलवे स्टेशन, कमरे, बारिश, रास्ते सब मिलकर कहानी की भावनाओं को आगे बढ़ाते हैं। और रेलवे स्टेशन की बात निकली है तो भी जरा ठहरिए, क्योंकि हिंदी सिनेमा में स्टेशन सिर्फ ट्रेन पकड़ने की जगह नहीं, कभी नहीं रही। स्टेशन पर किसी न किसी को पहली बार प्यार में देखा गया है, किसी ने किसी को आखिरी बार देखा गया है, किसी ने घर छोड़ दिया, किसी ने लौटने का इंतजार किया, और किसी ने शायद सिर्फ एक ट्रेन मिस कर दी लेकिन उसी के साथ पूरी जिंदगी का रास्ता भी बदल गया। इसलिए भारतीय फिल्मों में रेलवे स्टेशन अपने आप में एक पूरा पूरा पूरा का पूरा सिनेमैटिक कैरेक्टर है। तो चलिए इसी बात पर सुन लेते हैं हमारा अगला गीत।

14 अगस्त 1947 भारत के इतिहास का वो रक्त रंजित दिन जब देश का विभाजन हुआ और लाखों लोगों ने इस बंटवारे की त्रासदी से विभाजन के कारण लोगों को अपना घर परिवार जमीन और संपत्ति भी छोड़नी पड़ी। असहनीय पीड़ा से जूझते इन मजबूर और विस्थापित लोगों को निर्मम हिंसा का सामना करना पड़ा। वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विभाजन की असहनीय पीड़ा और दुख से गुजरे लोगों को याद करने और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की घोषणा की। आइए 14 अगस्त 2026 को बंटवारे और उस समय हुई क्रूर हिंसा के शिकार हुए लोगों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। अपने

0: आसपास होने वाले साइलेंट मार्च में भागीदारी करते हुए उनकी याद में एक मिनट का मौन धारण करें।
1: तो अब कैमरा लेकर चले निकल पहुंचते एक ऐसी जगह जहां हवा में समुद्र की नमी है और फिल्मों में अक्सर रिश्तों की गर्माहट। जी हाँ, गोवा। गोवा को लेकर हिंदी फिल्मों ने हमारी कल्पना को भी बदल दिया है। फिल्मों में गोवा सिर्फ बीच डेस्टिनेशन नहीं रहा, कभी दोस्ती का ठिकाना रहा, कभी छुट्टियों की आज़ादी, कभी प्रेम की शुरुआत और कभी जिंदगी से कुछ दिन दूर भाग जाने की जगह। लेकिन एक फिल्म ऐसी भी है जिसमें गोवा की खूबसूरती के बीच एक बिल्कुल अलग किस्म की कहानी चलती है, जहां जगह खूबसूरत है लेकिन कहानी बेचैन करती है। यही तो सिनेमा की ताकत है, वही सड़क, वही शहर, वही लैंडस्केप। एक फिल्म में रोमांस पैदा करता है, दूसरी फिल्म में सस्पेंस। तो जिस फिल्म की बात कर रही हूँ वो है दृश्यम। असल बात यह है कि लोकेशन को फिल्म किस नजर से देखती है उस पर काफी कुछ डिपेंड करता है, और यही नजर हमें लेकर आती है मध्य भारत की तरफ। पर उससे पहले सुन लेंगे हमारा अगला गीत भी।

0: था।
1: तो बात हो रही थी दोस्तों कि हम अब चलेंगे सीधे मध्य भारत की तरफ, जहाँ चमकते शहर नहीं बल्कि धूल भरी सड़कें, छोटे कस्बे और साधारण से दिखने वाली जगह भी कहानी का हिस्सा बन जाती है। पीपली लाइफ जैसी फिल्म में

भारत के ग्रामीण लैंडस्केप सिर्फ दृश्य नहीं थे, वो पूरी व्यवस्था, राजनीति और आम आदमी की जिंदगी का एक आईना बन जाता है। और फिर आती है घोसला का घोसला जैसी फिल्म में, दिल्ली और उसके आसपास का वो मिडिल क्लास संसार जिसे देखकर लगता है अरे ये तो हमारे ही शहर की कहानी है। यहाँ कोई स्विट्जरलैंड नहीं चाहिए, कोई विदेशी लोकेशन नहीं चाहिए, कहानी चलती है घर के नक्शे, कॉलोनी, सड़क, दुकान, उस जमीन के इर्द गिर्द जिसे पाने के लिए एक परिवार परेशान है। यही वजह है कि कुछ फिल्में अपनी जगहों के कारण हमें ज्यादा अपनी लगती है, क्योंकि उनमें हम पोस्टकार्ड नहीं देखते, हम अपना शहर देखते हैं। और अब जरा कैमरा उत्तर की तरफ मोड़ते हैं, पहाड़ों की ओर, पर उससे पहले सुन लेंगे ये गाना।

पहाड़ों की अपनी एक अलग भाषा रही है। पहाड़ों पर फिल्माया गया प्रेम हमेशा थोड़ा ज्यादा खूबसूरत लगता है, शायद इसलिए कि वहाँ आसमान बड़ा दिखाई देता है, रास्ते लंबे होते हैं और दो लोगों के बीच की दूरी भी कैमरे को ज्यादा गहरी दिखाई देती है। लेकिन हर पहाड़ी फिल्म सिर्फ प्रेम कहानी नहीं होती। हासिल ये जवानी है दीवानी जैसी फिल्मों के अलावा कुछ फिल्मों ने पहाड़ों को बहुत अलग नजर से देखा है। एक थी डायन जैसे सिनेमा में वही पहाड़ी वातावरण रहस्य पैदा करती है, यानी जगह वही लेकिन कहानी बदलते ही उसका रंग बदल जाता है। और यही तो हमारा आज का सफर है, जगह वही कहानी अलग, कभी पहाड़ प्रेम बन जाता है, कभी डर, कभी याद, कभी घर और कभी ऐसा रास्ता जहां से लौटना मानो संभव ही ना हो। तो अगर अपनी शुरुआत में मेरे सवाल का जवाब सोच लिया है कि कौन सी फिल्म की कौन सी जगह आपको सबसे ज्यादा याद है, तो उसे हमारे साथ साझा कर सकते हैं। फिलहाल फोन लाइन तो खुली हुई है और हम चलते हैं अगले गाने की ओर सीधे।

14 अगस्त 1947 भारत के इतिहास का वो रक्त रंजित दिन जब देश का विभाजन हुआ और लाखों लोगों ने इस बंटवारे की त्रासदी से विभाजन के कारण लोगों को अपना घर परिवार जमीन और संपत्ति भी छोड़नी पड़ी। असहनीय पीड़ा से जूझते इन मजबूर और विस्थापित लोगों को निर्मम हिंसा का सामना करना पड़ा। वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विभाजन की असहनीय पीड़ा और दुख से गुजरे लोगों को याद करने और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की घोषणा की। आइए 14 अगस्त 2026 को बंटवारे और उस समय हुई क्रूर हिंसा के शिकार हुए लोगों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। अपने आसपास होने वाले साइलेंट मार्च में भागीदारी करते हुए उनकी याद में एक मिनट का मौन धारण।

दोस्तों बात ट्रेन की हो रही थी। वैसे 1998 में जब निर्देशक मणिरत्नम फिल्म दिलसे में काम कर रहे थे तब उनके मन में एक ऐसी प्रेम कहानी थी जो खूबसूरत भी थी और बेचैन भी। लेकिन फिल्म का सबसे बड़ा आकर्षण बना उस फिल्म का संगीत और ख़ास तौर पर एक गीत चल चाहिए चाहिए। आज भी जब ये गीत बजता है तो सबसे पहले आंखों के सामने एक चलती हुई ट्रेन का दृश्य आता है, लेकिन इस दृश्य के पीछे की कहानी किसी रोमांचक फिल्म से कम नहीं है। बरसों बाद भी जब कोरियोग्राफर फराह खान और फिल्म से जुड़े लोगों को ने कई इंटरव्यू में बताया कि शुरुआत में इस गाने को किसी स्टूडियो सेट पर फिल्माने का विचार तो था, लेकिन मणिरत्नम कुछ ऐसा चाहते थे जो पहले कभी भारतीय सिनेमा में इस पैमाने पर न देखा गया। तभी चलती हुई ट्रेन की छत पर गीत फिल्माने का विचार सामने आया। ये सुनने में जितना आसान लगता है असल में उतना था नहीं। सुरक्षा सबसे बड़ी चुनौती थी। ट्रेन वास्तव में चल रही थी। शाहरुख खान और मलाइका अरोड़ा के साथ पूरी डांस टीम को ट्रेन की छत पर संतुलन बनाए रखते हुए नाचना नृत्य करना कई कलाकारों का विशेष सुरक्षा बल से बाधा गया। कैमरे अलग अलग एंगल पर लगाए गए और पूरी टीम ने हर टेक से पहले सुरक्षा का दोबारा जांच किया। फराह खान ने बाद में ये बताया था कि हवा इतनी तेज चल रही थी कि कई बार संतुलन बनाए रखना काफी मुश्किल हो जाता था। ट्रेन की गति, कैमरे की मूवमेंट और नृत्य कला, इन तीनों का एक साथ मेल बैठाना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती थी। यही वजह है कि इस गीत को पूरा करने की उम्मीद करने में उम्मीद से कहीं ज्यादा समय और तैयारी लगी। लेकिन दिलचस्प बात सिर्फ इतनी ही नहीं, एआर रहमान का संगीत, गुलजार के शब्द और उस अनोखे फिल्मांकन ने मिलकर छैया छैया को सिर्फ एक फिल्मी गीत नहीं रहने दिया, ये दुनिया की सबसे चर्चित फिल्मी गीतों में शामिल हो गया। बाद के वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी इस गीत का जिक्र हुआ और कई विदेशी फिल्मकारों ने इसकी प्रस्तुति की सराहना भी की। यही तो सिनेमा का जादू है। जब एक निर्देशक जोखिम उठाने का साहस करता है, कलाकार उस पर भरोसा करते हैं और पूरी टीम एक असंभव से लगने वाले विचार को सच कर बैठती है, तभी बनता है इतिहास। तो इसी बात पर हो जाए ये गाना।

ऐसे ही नज़ारा फिल्मों का बस अपने आखिरी पड़ाव में पहुंच चुका हूँ। जाते जाते एक और बहुत ही खूबसूरत सा गाना सुनाना चाहूँगी, क्योंकि 7:45 से है दोस्तों एक स्पेशल ब्रॉडकास्ट डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस मिनिमम मिनट्स ऑफ लॉ एंड जस्टिस पे एक स्पेशल प्रोग्राम है फिलहाल। 7:45 से जाते जाते बर्फी फिल्म से चलिए ये गाना सुन लेते हैं।

capital or we are having shortage of funds, someone in the family is ill, or home environment or the school environment or the workplace is having problems. So in sab cheezon ko leke hum, some individuals may feel stressful, some individuals may feel that this is part of life. To hamare reactions alag alag hote hain. And at the same time, we need to understand that some amount of stress is important to drive us to face those challenges. Agar hamare paas ek bacche ke saamne exam ho hi nahi, to wo padega hi kyun? To exam ek tarah se uske liye stress bhi create karta hai, par dusre perspective se usko ek challenge bhi milta hai ki mujhe aage seekhna hai. But at the same time, after a certain amount of stress, we become dysfunctional. जिसको हम कोप अप नहीं कर पा रहे हैं, वो हमारे लिए एंजाइटी देता है, घबराहट देता है, एक हेल्पलेसनेस की फीलिंग देता है. दैट इज द टाइम व्हेन वी नीड टू सीक हेल्प. इफ वी आर एबल टू फेस द स्ट्रेस एडिक्वेटली, वी आर फाइन. बट इफ वी आर नॉट एबल टू फेस द कोपिंग, वी आर नॉट एबल टू फेस दोज चैलेंजेस, देन वी स्टार्ट हैविंग हेडेक हो रहा है, मुझे बहुत थकान लगती है, मेरे को नींद नहीं आ रही है. सो दीज आर सम ऑफ द साइंस एंड कॉमनली रिपोर्टेड सिम्टम्स, वेदर दे आर इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल इश्यूज, क्योंकि अक्सर हम मेंटल हेल्थ इश्यूज को भी फिजिकल का नाम देते हैं. हमें महसूस यही होता है कि हमारे शरीर में थकान है, बट एक्चुअली द कॉज मे बी एट द मेंटल लेवल. ये कहना कि कब उदासीपन डिप्रेशन मतलब एक क्लिनिकल डिसऑर्डर बन जाता है, एक बीमारी का रूप धारण कर लेता है, बहुत कोई डिमार्केशन नहीं है. जनरली वी से दैट इफ इट इज परसिस्टेंट, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल ऑफ सैडनेस डिप्रेशन व्हिच इज वेरी कॉमन मेंटल डिसऑर्डर, एंड इट इज सैडनेस या डिप्रेशन इज कॉमनली यूज्ड वर्ड अमंग द पब्लिक. सो हाउ डू वी रिकॉग्नाइज दीज साइंस? जैसा कि मैंने कहा, सबसे पहले हम शारीरिक कंप्लेंट्स देते हैं, मेरे हेडेक हो रहा है, मेरा मन नहीं कर रहा नहाने का, मेरा कोई नींद ठीक से नहीं आती, या मुझे भूख बहुत ज्यादा लगती है, या मेरा मन नहीं करता है खाना खाने को. सो दीज आर सम ऑफ द फिजिकल सोमेटिक कंप्लेंट्स दैट इफ वन इज फीलिंग दैट और वन इज रिपोर्टिंग, वी नीड टू टेक इट सीरियसली. सम ऑफ द बिहेवियरल साइंस इंक्लूड, देयर इज अ सडन, पेरेंट्स आके कहते हैं कि कई बार पता नहीं बिना प्रोवोकेशन के, बिना कोई किसी कॉन्टेक्स्ट के इरिटेबल हो जाता है, वापस जवाब देता है, या अननेसेसरीली शॉपिंग आजकल हो रही है, एक्सट्रीम्स ऑफ बिहेवियर विच वॉज नॉट देयर अर्लियर. सो एनी चेंज ओवर द टाइम विच इज नॉट देयर, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल बाय द फैमिली, दैट मीन्स देयर इज सम दिस बिहेवियर नीड्स टू बी अटेंडेड टू. एट अ सोशल लेवल वी डोंट वॉन्ट टू इंटरैक्ट विद पीपल, वी डोंट वॉन्ट टू रिस्पॉन्ड टू पीपल, रिस्पॉन्ड टू फैमिली मेम्बर्स. छोटी छोटी चीज़ों को लेके हम नर्वस हो जाते हैं, समटाइम्स वी से दैट मुझे लग रहा है कि बस जिंदगी का अंत आ गया है. सो दीज काइंड ऑफ इमोशनल रिस्पॉन्सेज ऑल्सो आर अ मैटर ऑफ कंसर्न एंड may be an indication for mental illness. So, मोटे तौर से अगर हम देखें तो कुछ ऐसे signs होते हैं जो irrespective, they can be, these signs can be due to some physical illness and these can also be signs for some mental illness. हमारे रोज के रोजमर्रा का जो routine है उसमें changes आ रहे हैं, बच्चा school नहीं जाना चाह रहा है, college जाने में छुट्टी अक्सर आ रही है, हम workplace से कोई ना कोई बहाना लेके जल्दी वापस आ जाते हैं, वी आर नॉट ईटिंग वेल, आई गेट अप इन बिटवीन एट नाइट, और देयर इज अ चेंज इन माई इंटरैक्टिव. पहले बहुत ज्यादा सोशलाइजेशन होती थी, अभी मैं मेरा मन नहीं करता है. सो दीज आर ग्रॉस साइंस विच मे बी ड्यू टू एनी रीजन, बट दे आर इम्पॉर्टेंट टू बी पिक्ड. सम साइंस आर स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर डिसऑर्डर, ये सब कॉमन बीमारी है, बहुत ज़्यादा चेकिंग होती है, बहुत ज़्यादा लगता है कि बहुत गंदा हूँ तो बार बार नहाते हैं, या बहुत ज़्यादा हैंड वॉशिंग होती है, तो OCD ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर. बच्चों में अक्सर स्कूल से रेफरल आते हैं कि बच्चे में बहुत ज़्यादा, वो 7th क्लास में पढ़ रहा है पर उसको अभी तक सेंटेंस बनाना नहीं आता, उसकी स्पेलिंग में एरर्स बहुत हैं, या मैथ्स में वो 2nd क्लास का परफॉर्मेंस है. स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर, तारे जमीन पर हम सब ने देखी है, एंड दैट इज वन वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हाट दिस इज अबाउट. मेनी टाइम्स अनलाइक अदर

पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला। आप सुन रहे हैं छाया लोग 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला। छाया लोग

गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। 107 एफएम रेनबो एक बार फिर हाजिर है कार्यक्रम छाया लोक लेकर। आपका रेडियो वाला दोस्त रोशन मुरार कर रहूंगा 9 बजे तक। आपको लेकर आना है अपनी फरमाइश, नंबर नंबर बताऊंगा दोस्तों थोड़ी देर बाद। तब तक सुनिए ये प्यारा सा नगमा।

14 अगस्त 1947 भारत के इतिहास का वो रक्त रंजित दिन जब देश का विभाजन हुआ और लाखों लोगों ने इस बंटवारे की त्रासदी से विभाजन के कारण लोगों को अपना घर परिवार जमीन और संपत्ति भी छोड़नी पड़ी। असहनीय पीड़ा से जूझते इन मजबूर और विस्थापित लोगों को निर्मम हिंसा का सामना करना पड़ा। वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विभाजन की असहनीय पीड़ा और दुख से गुजरे लोगों को याद करने और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की घोषणा की। आइए 14 अगस्त 2026 को बंटवारे और उस समय हुई क्रूर हिंसा के शिकार हुए लोगों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। अपने आसपास होने वाले साइलेंट मार्च में भागीदारी करते हुए उनकी याद में एक मिनट का मौन धारण करें।

दोस्तों, जैसा कि आप पता है आपको कि आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छायालोक अपने रेडियो वाले दोस्त रोशन मरारका के साथ, और आपको आना है अपनी फरमाइश लेकर। नंबर है हमारा 2213-1341। नंबर एक बार फिर से बता दूं, 2213-1341। आइए फटाफट, क्योंकि आपके फोन कॉल्स का आपका दोस्त रोशन मरारका इंतजार कर रहा है।

0: दोस्तों चलिए लाइन पे कॉलर फ्रेंड आ चुके हैं, उनसे बातें कर लेते हैं। हेलो
1: है, नमस्ते दादा।
0: नमस्ते,
1: मैं विमल मित्र राजभाट भूले से बोल रहा हूँ।
0: हाँ बोलिए विमल जी, कैसे हैं
1: आप? हम अच्छे हैं, आप कैसे हैं?
0: हम भी अच्छे हैं भाई।
1: आज के दिन श्रीदेवी का जन्मदिन है।
0: अच्छा,
1: आपका पास जी श्रीदेवी अभिनीत कोई भी गाना हो तो गाना वाक्य छवि तू भी बेकरार मैं भी बेकरार एक गाना होता आप सुना दीजिए।
0: अच्छा ये बताइए श्रीदेवी क्या फैन वैन थे क्या, कभी भी हैं?
1: देखिए श्रीदेवी का ज्यादा फिल्म है, सभी हिट है। आज वो श्रीदेवी नहीं खराब लग रहा है।
0: नहीं नहीं वो तो बात देखिए सच्ची भाई साहब ऐसा है ना, सच्ची बात तो यह है कि जिसने जन्म लिया है उसको भगवान के पास जाना ही होगा, है ना?
1: जाना पड़ेगा।
0: हाँ तो अब तो उसके लिए तो कोई उपाय नहीं है। कौन सी फिल्म आपको बहुत अच्छी लगी थी उनकी?
1: श्रीदेवी का ज्यादा फिल्म ही अच्छा है।
0: ज्यादा फिल्म ही अच्छा, अच्छा अच्छा
1: ज्यादा फिल्म है, सब फिल्म ही अच्छा है।
0: चलिए
1: आपको और हमारा दोस्त सुदीप्त वाक्य सुनाना चाहता हूँ।
0: चलिए ठीक है, सुनवाते हैं।
1: नमस्ते।

दोस्तों, कॉलर फ्रेंड की फरमाइश कर उनकी पसंद का गीत हम सुनवा रहे हैं। और अगर आप भी चाहते हैं अपनी मनपसंद गीत को सुनना तो नंबर डायल कीजिए 2213-1341। 9 बजे तक आपका रेडियो वाला दोस्त रोशन मुरारका आपके फोन कॉल्स का इंतजार कर रहा है।

0: चलिए फोन लाइन पर कॉलर फ्रेंड बेकरार हैं, उनसे बातें कर लेते हैं। हेलो
1: हेलो, नमस्ते जी। रोशन जी नमस्ते।
0: नमस्ते नमस्ते।
1: हाँ, मैं बरगा से गिरजापुर पर हावड़ा से प्रशांत धोक बोल रहा हूँ।
0: बोलिए भाई साहब।
1: हाँ, आज श्रीदेवी का जन्मदिन है। हमारा फेवरेट एक्टर में से एक है, एक्ट्रेस में से एक है, तो उनके सारे फिल्म जैसे मिस्टर इंडिया हो या चालवाज, चांदनी, ये सब फिल्म देखे हुए हैं, बहुत ही अच्छे लगता है।
0: अच्छा, मिस्टर इंडिया का कौन सा डायलॉग बहुत फेमस हुआ था, याद है आपको?
1: मिस्टर इंडिया का मुगम्बो खुश हुआ, वो तो फेवरेट में से एक है।
0: तो स्टाइल में बोलिए ना।
1: ऐसा तो मैं कह नहीं सकता, मुगम्बो खुश हुआ ऐसा।
0: ना ना ना ना, ऐसे नहीं चलेगा भाई साहब, ऐसे नहीं चलेगा।
1: जैसे तो हम बोल नहीं सकते।
0: अरे क्यों नहीं बोल सकते, आप प्रयास कीजिए ना, क्यों नहीं बोल सकते? देखिए, सबकी लाइन नहीं मिलती, आपकी लाइन मिलती है, तो कुछ तो आपके स्पेशल है ना।
1: नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वैसे मैं बता नहीं सकता हूँ, अमृत पुरी जैसा।
0: अच्छा, नहीं बोल सकते। अरे कोशिश कीजिए, एक बार कोशिश कीजिए।
1: मुगम्बो खुश हुआ
0: नहीं हुआ।
1: अच्छा, आखिर के दो फिल्म थे श्रीदेवी के, जैसे मॉम फिल्म थे और इंग्लिश भी देखे हुए हैं, बहुत ही अच्छे फिल्म थे। तो हाँ, उस फिल्म में से एक गाना है इंग्लिश का टाइटल सॉन्ग, वही सुनना चाहता हूँ आज।
0: चलिए ठीक है भाई साहब, सुनवाते हैं।

14 अगस्त 1947 भारत के इतिहास का वो रक्त रंजित दिन जब देश का विभाजन हुआ और लाखों लोगों ने इस बंटवारे की त्रासदी से विभाजन के कारण लोगों को अपना घर परिवार जमीन और संपत्ति भी छोड़नी पड़ी। असहनीय पीड़ा से जूझते इन मजबूर और विस्थापित लोगों को निर्मम हिंसा का सामना करना पड़ा। वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विभाजन की असहनीय पीड़ा और दुख से गुजरे लोगों को याद करने और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की घोषणा की। आइए 14 अगस्त 2026 को बंटवारे और उस समय हुई क्रूर हिंसा के शिकार हुए लोगों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। अपने आसपास होने वाले साइलेंट मार्च में भागीदारी करते हुए उनकी याद में एक मिनट का मौन धारण।

पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला। आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक, छायालोक।

0: హలో,
1: గుడ్ ఈవినింగ్ అవసర్ జీ.
0: గుడ్ ఈవినింగ్. हाँ, फोन सेट को थोड़ा दूर रखिए, बताइए.
1: हाँ, बहुत दूर है. आपका मीठी आवाज सुनकर कुछ बोलना चाहता हूँ.
0: मीठी आवाज सुनकर? अच्छा, ये क्या बीच में पै आ जा रहा है, बताइए.
1: वो रेडियो का गलती है, मेरा गलती नहीं सर.
0: अच्छा, वैसे भी लोग दूसरों की गलती बताते हैं हमेशा, खुद की गलती तो कोई बताता नहीं है. है ना,
1: हमारे आवाज बन गए.
0: हाँ, बताइए बताइए.
1: ख्वाहिश है तुम्हारी तरह आवाज पाने की. ख्वाहिश है तुम्हारी तरह आवाज पाने की, मगर कोई हसरत नहीं इस दीवाने की.
0: क्या बात है.
1: शिकवा तुमसे नहीं, शिकवा तुमसे नहीं, खुदा से है. क्या जरूरत थी तुम्हारी आवाज इतना बेहतरीन और हसीन बनाने की.
0: क्या बात है भाई साहब. ये क्या खुद से लिखते हैं या कहीं से गायब वायब कर लेते हैं?
1: कुछ लिखा है, कुछ

0: लेता है,
1: हेल्प लेते हैं। चलिए अच्छी बात है, सच कहा आपने, है ना। बताइए क्या सुनना चाहेंगे, ये बहुत डिस्टर्ब हो रहा है लाइन आपकी। बताइए क्या सुनना चाहेंगे।
0: गुलामी फिल्म से
1: अच्छा ये बताइए मुनिरुद्दीन जी, गाना उना गाते हैं कि नहीं आप?
0: नहीं नहीं मैं पढ़ाता हूँ।
1: पढ़ाते हैं? क्या गाना पढ़ाते हैं?
0: नहीं नहीं मैं किताब पढ़ाता हूँ।
1: अच्छा किताब
0: स्टूडेंट को?
1: हाँ जी
0: स्टूडेंट को,
1: स्टूडेंट को पढ़ाते हैं। क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं आप?
0: वो इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है।
1: वाह क्या बात है, चलिए ठीक है। तो ये गाना सुनिए फिर उसके बाद पढ़ाना शुरू करिएगा, है ना।
0: ठीक है, थैंक यू।
1: दोस्तों 8:38 हो चुके हैं, कॉलर फ्रेंड की आपको पता है, कॉलर फ्रेंड की बातों की फरमाइश का हम गीत सुना रहे हैं। नंबर है हमारा 2213-1341, जहां आपका रेडियो वाला दोस्त आपकी फरमाइश का इंतजार कर रहा है। आइए फटाफट, नंबर है हमारा 2213-1341, जहां इंतजार है आपके फोन कॉल्स का, आपके रेडियो वाले दोस्त रोशन मुरारका को।

पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला। आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक, छायालोक।

0: हेलो
1: हेलो
0: हाँ
1: गुड इवनिंग सर।
0: गुड इवनिंग।
1: अच्छा प्लीज मुझे गाना सुना दीजिए।
0: गाना तो सुनवाएंगे भाई साहब, लेकिन कौन बोल रहे हैं अपना परिचय तो दीजिए।
1: अच्छा मैं सोमनाथ घोष डोंगडोंग कैंटोनमेंट से बोलता हूँ।
0: अरे कैसे हैं सोमनाथ जी?
1: वो ठीक है एकदम, वो बिंदास।
0: अरे पता चला डमडम में बारिश बहुत हुई है।
1: हाँ?
0: दमदम में बारिश बहुत हुई है एक दो दिन पहले।
1: अरे आवाज सुना, मुझे सुनाई नहीं देता।
0: सुनाई नहीं देता? ओहो हाँ जी बोलिए, कौन सा गाना बताइए?
1: अच्छा फिल्म का नाम है हीरो नंबर वन।
0: क्या बात है।
1: अच्छा गाने का बोल है सोना कितना सुना है।
0: अच्छा ये बताइए सोमनाथ जी, ये गाना आपको क्यों पसंद है?
1: अरे मैं गोल्ड का बहुत है।
0: हाँ जी
1: गोल्ड मुझे बहुत अच्छा लगता है।
0: ओहो गोल्ड मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्या बात है।
1: अच्छा
0: ठीक ठीक है सोमनाथ जी, मैं सुनवाता हूँ।

दोस्तों, स्टूडियो की घड़ी में 8:56:03 हो चुके हैं। कार्यक्रम का आखिरी गीत सुनते सुनते आपके रेडियो वाले दोस्त रोशन मरारका को कार्यक्रम छायालोक समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। मिलूंगा फिर किसी अगली शाम, तब तक के लिए नमस्कार, गुड नाइट, शब्बा खैर।

0: आज हम अमर शहीदों को नमन करते हैं और राष्ट्र निर्माण में जुटे हर भारतीय का अभिनंदन करते हैं। विक्रम 1 की लॉन्चिंग, $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य, राष्ट्रमंडल खेलों में 39 पदक और डिजिटल क्रांति, यही है नए भारत की पहचान। फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के हर घर तिरंगा हर दिन तिरंगा अभियान से जुड़े। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
1: आइए सुनते हैं फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट श्री नवीन जिंदल का विशेष संदेश।
0: वंदे मातरम। प्यारे देशवासियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम अमर शहीदों को नमन करते हैं और राष्ट्र निर्माण में जुटे हर भारतीय का अभिनंदन करते हैं। विक्रम 1 की लॉन्चिंग, $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य, राष्ट्रमंडल खेलों में 39 पदक और डिजिटल क्रांति, यही है नए भारत की पहचान। फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के हर घर तिरंगा हर दिन तिरंगा अभियान से जुड़े। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
1: आइए
2: এখন শুনবেন যুববাণীর অনুষ্ঠান মজারু, উপস্থাপনায় সৌরভ দেবনাথ এবং মল্লিকা চৌধুরী।